0: ईद मुबारक दोस्तों, आप सभी को ईद की तहे दिल से शुभकामनाएं। आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो।
1: All is well. आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो,
0: ऑन MGM 90.8 FM। आज है ईद उल अजहा, यानी कि आज के दिन ना हज यात्रा खत्म होती है। तो इसका खत्म होने का जो सफर है वो शुरू होता है। हज यानी कि इस्लामिक रिलीजन के अंदर जो सबसे अहम यात्रा है उसे हज कहा जाता है, जो कि सऊदी अरेबिया में है, जो कि मक्का की सरजमी पर आज हजारों लाखों लोग हज पूरा कर रहे हैं। कंधों पर एक कपड़ा और होठों पर दुआ होती है। हज सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जहाँ इंसान अपनी पहचान, अपना अहंकार और अपनी हर चाहत छोड़कर रब के सामने झुक जाता है। तो चलिए आज के इस मुकद्दस दिन पर हम सभी अपने दिल की कोई ना कोई नाफरमानी, कोई बुरी आदत छोड़ देते हैं, उसे कुर्बान करते हैं। शायद यही चीज हमें एक बेहतर इंसान बना दे। तो आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दुआ है कि आपकी जिंदगी में बरकत हो, मोहब्बत हो और रूह को सुकून देने वाली खुशी हो, जो सिर्फ देने में मिलती है। ईद मुबारक। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: गुड मॉर्निंग संभाजीनगर, आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. और इस वक्त हम एक सुनते हैं मोटिवेशनल कहानी स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से रिलेटेड. सो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार हिमालय की यात्रा पर थे. पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए वो एक गांव पहुंचे. वहां के लोग बहुत डरे हुए थे. उन्होंने बताया कि पास के जंगल में एक शेर घूम रहा है और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता. स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, डर को जितना छुपाओगे उतना ही बड़ा होता है, सामना करोगे तो खत्म हो जाएगा. गांव वालों ने डरते डरते कहा, पर स्वामी जी वो शेर असली है. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, डर भी असली होता है, लेकिन डर पर जीत सिर्फ साहस से मिलती है, भागने से नहीं. फिर क्या था, वो खुद चल दिए जंगल की ओर अकेले, ना कोई हथियार ना कोई डर. कुछ दूरी पर उन्हें शेर दिखाई दिया. वो आंखों में आंखें डालकर शेर की ओर बढ़ते रहे. शेर भी एक पल को रुका, फिर पीछे मुड़ा और जंगल में चला गया.

शेर भी एक पल को रुका, पीछे मुड़ा और जंगल में चला गया। गांव वाले हैरान। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर बोले, शेर को नहीं हराया मैंने, बल्कि अपने डर को हराया। और जब आप खुद पर जीत जाते हैं तो दुनिया भी आपको सलाम करती है। कभी कभी शेर हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। शक, डर, असफलता का डर, असफलता का डर, लेकिन एक बार उनका सामना कर लो, फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार जब डर लगे स्वामी विवेकानंद जी को याद करना और बस एक कदम आगे बढ़ा देना, और एक कदम बस आगे बढ़ा देना। डरो मत, सत्य के रास्ते पर चलो, साहसी बनो स्वामी विवेकानंद जी की तरह। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताना, डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गिफ्ट जितना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करना पड़ती है। RJ अदनान आपके साथ इन द शो।
1: All is well. RJ अदनान का मॉर्निंग शो। फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो।
0: On MGM 90.8 FM. And by the way, गिफ्ट जीतने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और सवाल मतलब एक पहेली है, और इस गेम का नाम है So, आज की पहली कुछ ऐसी है कि ना मैं सब्जी ना मैं फल, फिर भी हूँ सबके लिए जरूरी, खाते हो मुझे रोजाना, पर नाम मेरा मत भूल जाना। बताओ मैं क्या हूँ? समझ में आएगा क्या है तो आपको ये पहली। सो बताइए मुझे डीएम कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। फिर मत कहना कि यार मैंने जवाब दिया था, आपने नाम नहीं लिया। जो जल्दी जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सो जल्दी करें एंड सुनते रहे MGM 90.8 FM।

0: किसी किसी को आदत होती है बैठे बैठे खो जाने की. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. बड़ी आदत एक बीमारी भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में हम जान रहे तो इसमें हमें पता चला है. तो इस पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, साइकोलॉजिस्ट. सो मैम, एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग ना तो बैठे बैठे खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, या तो फिर कोई बात कर रहा है इंसान और बात करते करते एकदम शांत होता है, उसको थोड़ा आवाज दी, उसको हिलाया तो वो वापस से जगह पर आता है, वरना एक अपने अलग दुनिया में वो चला जाता है. तो ये ऐसा क्यों होता है?
1: हमको बहुत माइंडफुल रहना होगा और हमको प्रेजेंट टेंस में रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम जब ओवरथिंक करते हैं हम उस थॉट्स के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हम पास्ट में चले जाते हैं, हम किसी और सिटी में पहुंच जाते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी वहाँ पे रहता है. एंड इन अ वे इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि तब हम मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं या और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं है बिल्कुल. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खो जाते हैं, है ना, टर्न मिस हो जाता है क्योंकि हम थिंकिंग में कहीं और ही थे. तो व्हेनेवर यू नो वी आर ड्राइविंग और वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, हमको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा. जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हम थोड़ा हॉर्न बजा देंगे कि हम थोड़ा वापस आ जाए, है ना, और या तो कोई काम कर रहे हैं तो हम ना थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा 5 कदम चलेंगे, सो दैट वी कम बैक. फिर हम किसी चीज को, जैसे टेबल है हमारे ऑफिस में, हम उसको छुएंगे टेबल को और हम उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये क्या है, तो ये हमें बैक टू प्रेजेंट मोमेंट लाएगा. सो दीज आर सम यू नो एक्सरसाइजेस जो हम प्रेजेंट टेंस में वापस आने के लिए करेंगे, और ये हमको टेम्परेरीली ही वापस लाएंगी. इसीलिए तो हमें माइंडफुल रहना है कि जैसे ही हमारा मन भटक रहा हो तो ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करके हमको उसे वापस लाना होगा, वरना हम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे.
0: सो दोस्तों, ये सब बातें याद रखिएगा मैम ने जो बताई, और आपके भी दिमाग में कुछ सवाल होंगे रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग या मेंटल हेल्थ, तो बेझिझक हमसे आप पूछ सकते हो 9359320080 इस नंबर पर.

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा काम है। MGM 90.8 FM पर आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो MS 20 नो मोर सेंटी। और आज गाने की फरमाइश आई है अक्षय देशमुख की तरफ से इस गाने की।

क्या बात है यार, सागर जैसी आंखों वाली बेहतरीन सा बढ़िया सा रोमांटिक सा गाना है, अक्षय ने फरमाइश की है। तो चलिए फिर अक्षय की फरमाइश पूरी करते हैं। आणि हो, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर तुम्ही मला व्हाट्सअप करून कळू शकता 9359320080 या व्हाट्सअप नंबर वर। नंबर पुन्हा एकदा ऐका 9359320080। आपकी जो कुछ फरमाइश हो पूरी कीजिएगा और फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर हिट गाना अक्षय जी की फरमाइश पर। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MTM 90.8 FM।

रॉन्ग साइड जाओगे तो बड़ा पछताओगे, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अपने छत्रपति संभाजीनगर के ट्रैफिक पुलिस वाले ना तो एकदम एक्शन मोड पर आ चुके हैं, एंड जो रॉन्ग साइड से जाने वाले हैं और जो रूल्स ब्रेक करने वाले थे उन पर कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। एंड स्पेशली ना तो अपने जालना रोड के ऊपर रॉन्ग साइड से बहुत लोग जाते हैं, एंड क्रांति चौक में आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर कोई स्मारक के पास वहां पर खड़ा हो जहां पर झंडा लगाया है तो उसे वापस क्रांति चौक आना हो ना तो गोपालटी के पास से जाके यू टर्न लेकर वो बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्या करेगा, उसी जगह से रॉन्ग साइड से होते हुए सामने मिठाई की दुकानें वहां तक आएगा और वहां से रोड क्रॉस करेगा। तो ये भी एकदम गलत बात है, क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है जिसने आपको देखा नहीं तो फुजल में आपकी टक्कर तो हो ही जाएगी और नुकसान आप ही का होगा। तो ये वहाँ पर अक्सर दिखाई देता है, ये एक चीज, वहाँ पर ज्यादा लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं। एंड इसी के साथ अपने शहर में ऐसे कुछ मेन स्पॉट है जहाँ पर अक्सर लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। पहला है हाईकोर्ट के सामने, उसके बाद सियोन हिल ब्रिज के नीचे से, एंड फिर मोंडा नाका सिग्नल है उसके नीचे से भी लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। अमरप्रीत चौक से मोंडा नाका रोड तक, एंड अदालत रोड, जिला न्यायालय, इसके सामने से भी लोग अक्सर रॉन्ग साइड से जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो भाई थोड़ा बच के रहिएगा, अगर पुलिस की नजर आप पर गई तो आपको तो फाइन भरना ही पड़ेगा। और आप सोच रहे होगे कि यार मुझे कौन ही देखेगा, तो भाई हर सिग्नल के ऊपर ना कैमरे लगाए हुए हैं तो वो आपके ऊपर नजर तो रख रहे हैं। और इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जान आपकी जाएगी या अस्पताल का बिल आपको भरना पड़ेगा। सो इतना ही मैं कहूंगा कि रूल्स फॉलो कीजिएगा वरना फाइन भरिएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: जो घूमने के शौकीन है उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अब अजेंडा लेनी जाने का सफर होने वाला है एकदम आसान और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इको फ्रेंडली ये सफर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ के लिए ना तो इलेक्ट्रिक बसेस चलने वाली है, मतलब ना ज्यादा पोल्यूशन, ना डीजल की स्मेल, सिर्फ स्मूथ और क्लीन राइड आपकी रहेगी। ये बसेस चलेगी छत्रपति संभाजीनगर से डायरेक्ट अजेंडा लेनी तक और सिर्फ 150 रुपए इसका टिकट होने वाला है, मतलब सस्ते में आप अजेंडा पहुंच सकते हो 150 रुपए में। सोचो पहले जहाँ ट्रैवल थोड़ा हेक्टिक लगता था, अब वही ट्रिप हो जाएगी कम्फर्टेबल, अफोर्डेबल और नेचर फ्रेंडली। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी घूमने का आपको प्लान बनाओ तो एक बार अजेंडा ट्रिप जरूर ट्रिप में ऐड कर लेना। और ये ई व्हीकल इसलिए शुरू कर दी गई है क्योंकि अजेंडा कियोस्क के पास अगर डीजल गाड़ियां जाती पोल्यूशन होता है, इस वजह से वहां के कियोस्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब अजेंडा के लिए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू होने वाली है, वो भी 8 इलेक्ट्रिक बसेस रहेगी, यानी कि आना जाना अब आसानी से हो सकता है। तो इसी तरीके से नेलोरा के लिए भी ऐसी बसेस शुरू कर देनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ताकि वहां पर भी लोगों का आना जाना आसानी से हो और पोल्यूशन की वजह से एलोरा कियोस्क भी खराब ना हो। अब अजेंडा के लिए शुरू कर दी गई है, देखते हैं कि आने वाले वक्त में एलोरा के लिए भी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhaji.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.

0: शो के स्टार्टिंग में हम एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम था
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: और इस गेम के अंदर मैंने आपको एक पहेली पूछा था और आप लोग मुझे बताने वाले थे कि उसका जवाब क्या है। सो पहेली फिर से एक बार सुनते हैं कि ना मैं सब्जी ना मैं फल, फिर भी हो सबके लिए जरूरी, खाते हो मुझे रोजाना, पर नाम मेरा मत भूल जाना, बताओ मैं क्या हूँ। सो इसका जवाब है नमक। जी हाँ, नमक नमक और नमक, एकदम सही जवाब दिया है श्रुति काले ने। सो कांग्रेचुलेशन श्रुति जी, आज आप विनर बन चुके हो हमारे इस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन के। सो आपको मिलेगा हमारी तरफ से खास गिफ्ट, और उस खास गिफ्ट के लिए आपको स्टूडियो में जरूर आना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए। सो देखो यार, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है और ये विनर बन चुके हैं। आप भी ऐसे विनर बन सकते हो मेरे पहेलियों के जवाब देकर। और बाकी तो सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ MG 90.8।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Ananka morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, आप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

अपना आवाज आपके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: मधुबनी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राहों की दूरी।
0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

दूर, कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ।

0: तो बाते
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: अमा यार सौदा सौदा
1: ओहो दोनों दिल

0: न भगवान करे जाहिर न ऐलान खुदा करता है, वो दिल ही होता है जो दिल की बातें बयां करता है।
1: Right. Stupid.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, लेकर आई हूं एक दिलचस्प सोच आपके शाम के नाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है थोड़ा अलग, थोड़ा हटके। क्या आज की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती? ऑफ कोर्स यार, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, वो तो मुझसे यही कहती कि मैं तो शादी नहीं करने वाली। अब सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि आज की लड़कियां अपनी लाइफ को लेकर पहले से ज्यादा क्लियर है। वो सिर्फ नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती, बल्कि सही इंसान, सही समय और सही समझ का इंतजार करना चाहती है। आज की लड़की अपने सपनों को जानती है, उसकी करियर, उसकी आजादी, उसकी पहचान उसके लिए बहुत मायने रखती है। वो चाहती है कि शादी उसके सपनों को रोके ना, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ये सिर्फ ना कहने वाली बात नहीं है, ये सही चीज का इंतजार करने वाली बात है। पहले जहां समाज का दबाव ज्यादा होता था, वहीं अब लड़कियां अपने फैसले खुद लेना जानती है। वो समझती है कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार या रिश्तों की परवाह नहीं, बल्कि वो चाहती है कि रिश्ता ऐसा हो जहाँ सम्मान, समझ और बराबरी हो। तो दोस्तों, बदलते समय के साथ सोच भी बदलो, और यही बदलाव शायद हमें एक बेहतर और समझदार समाज की तरफ ले जा रहा हो। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ और खूबसूरत सॉन्ग ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। बल आज की ये छोटी सी बात शायद आपके दिल को सुकून दे। आज को जियो, कल की चिंता छोड़ दो। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज में कम और कल की फिक्र में ज्यादा जीते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, और इन सवालों में हम अपना आज ही खो देते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, कल कभी हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। जो हमारे पास है वो सिर्फ ये पल है, ये आज है। अगर आप आज को खुशी से जी लेंगे तो कल अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। थोड़ा सा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए, शायद कोई छोटी सी खुशी आपका इंतजार कर रही हो। एक कप चाय, किसी अपने से बात, या बस कुछ पल अपने साथ। वह जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। कभी कभी बस छोड़ देना भी जरूरी होता है, जैसे कि टेंशन को, ओवरथिंकिंग को और उन बातों को जो अभी हुई नहीं है। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस पल को पूरी तरह जिएंगे, बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपको इस पल में जीना सिखा देगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये पल है खास और ये शाम है सिर्फ आपके लिए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आज की खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूंगी इस पूरे वक्त में मेरे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। कभी किसी गाने ने मुस्कुराया होगा तो कभी किसी बात ने थोड़ा सोचने पर मजबूर किया होगा। दोस्तों, जिंदगी भी एक रेडियो शो की तरह होती है। हर दिन एक नया गाना एक नई कहानी लेकर आता है। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं और कुछ हमें सिखा जाते हैं। तो जो अच्छा है उसे दिल में रखिए और जो थोड़ा मुश्किल है उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों को वक्त दीजिए और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना मत भूलिए। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो तो कल फिर इसी वक्त इसी जगह जरूर मिलेंगे। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शाम के साथ इसी वक्त इसी शो में, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: फिर एक बार दिल से आपका स्वागत करती हूँ ऑन योर फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, एंड ऑफ कोर्स आज लेकर आई हूँ मैं एक सुहानी शाम, खुशनुमा शाम सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले आप सबको एक प्यारा सा गुड इवनिंग। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा, और अगर दिन थोड़ा थका देने वाला था तो कोई बात नहीं, अब समय है रिलैक्स होने का, मुस्कुराने का और खुद को थोड़ा सा टाइम देने का। दोस्तों, शाम का ये वक्त होता ही खास है, न दिन की भाग दौड़ न रात की जल्दबाजी, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी बातें और ढेर सारा म्यूजिक। तो आप जहाँ भी है, घर पर, ऑफिस से लौट रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं आपके शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आज के शो में हम बातें करेंगे कुछ दिलचस्प किस्सों की, सुनेंगे आपके मन पसंदीदा गाने और साथ ही जानेंगे आपके दिल की बातें। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं या बस कहना चाहते हैं हाय, तो तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। और हाँ, खुद को थोड़ा सा ब्रेक देना मत भूलिए, एक कप चाय या कॉफी ले लीजिए और इस पल को एंजॉय कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने के साथ, जो आपकी शाम को और भी खास बना देगा। बनी रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शाम है आपकी और ये म्यूजिक है दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM campus in Sixth Circle, Chhatrapati Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ, जो बनाना चाहती हूँ इस शाम को थोड़ा और खास। आज की ये छोटी सी बात दिल से है और वो बात है अपने सपनों को प्रायोरिटाइज करिए। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, काम, परिवार, लोगों की उम्मीदें और इन सब के बीच हम अक्सर अपने ही सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। कभी सोचा है जो सपना आपने दिल से देखा था वो अब कहाँ है? वह सच तो ये है कि अगर आप अपने सपनों को महत्व नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालना और अपने पैशन पर काम करना ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपकी पहचान है। हर दिन बड़ा कदम उठाना जरूरी है, बस छोटा सा एक स्टेप, एक कोशिश, एक शुरुआत, यही आपको आपके सपने के और भी करीब ले जाएगी। याद रखिए, दूसरों को खुश करते करते अगर आप खुद को भूल गए हैं तो खुशी अधूरी रह जाएगी। इसलिए खुद को भी उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप दूसरों को देते हैं। तो आज अभी अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को टालेंगे नहीं बल्कि उन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ सुनते हैं खूबसूरत गाना जो आपको आपके सपनों के और भी करीब ले जाएगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सफर आपका है और हम आपके साथ है। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। एंड ऑफ कोर्स बातें करेंगे और भी कुछ खास। आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात, खासकर गर्मी के मौसम में धूप से आकर सीधे एसी में मत बैठिए क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम सब क्या करते हैं, बाहर तेज धूप गर्मी से परेशान होकर जैसे ही घर या ऑफिस पहुँचते हैं तुरंत एसी ऑन करके उसके सामने बैठ जाते हैं। उस वक्त बहुत राहत मिलती है ना। लेकिन दोस्तों ये आदत आपकी सेहत के लिए बहुत ही खराब और खतरनाक हो सकती है। जब आप धूप में होते हैं तब आपका शरीर काफी गर्म होता है और अचानक ठंडी हवा में जाने से शरीर को झटका लगता है। इससे सर्दी खांसी सिरदर्द बॉडी पेन या कभी कभी बुखार भी हो सकता है। तो क्या करें ऐसे में, बहुत आसान है, बस 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए। घर आकर पहले थोड़ा रिलैक्स करें, पानी पिए, चेहरे और हाथ को धो ले और जब शरीर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब एसी या कूलर का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आदतें ही हमें स्वस्थ बनाती है। तो आज से खुद का ख्याल थोड़ा और बेहतर तरीके से रखिए क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ और गानों की ओर एंड सुनते हैं कुछ और शानदार गाने। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा एंड ऑफ कोर्स लेकर आई हूं एक और दिल से जुड़ी हुई शाम। दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत सूफियाना एहसास देने वाला गाना। इस गाने में एक ऐसी दीवानगी है, ऐसा समर्पण है जहाँ प्यार इबादत बन जाता है। जब कोई दिल से किसी को चाहता है तो वो हर हद पार कर देता है बस एक झलक, एक एहसास के लिए, जैसे कोई अपने रब के दर पर खड़ा हो पूरी सच्चाई और जुनून के साथ। और यही वजह है कि ये गाना आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाता है। अगर आपने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा है या किसी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा महसूस किया है तो ये गाना आपको जरूर अपने करीब लाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है उस एहसास में खो जाने का। आंखें बंद कीजिए, दिल को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए इस खूबसूरत सूफियाना सफर को। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर गाना दिल से जुड़ा होता है। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: पीपल, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आपकी शाम को बना रही हूँ और भी खास। वेल, आज हम बात करने वाले हैं पुणे की एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास की जिंदा कहानी है। मैं बात कर रही हूँ शनिवार वाड़ा की। शनिवार वाड़ा का नाम सुनते ही एक शाही दौर याद आ जाता है। इसे 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था और ये मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था। कभी यहाँ राजसी फैसले लिए जाते थे, भव्य समारोह हुआ करता था और हाँ, हर कोना अपनी अलग कहानी कहता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह का एक रहस्यमय पहलू भी है। जैसे कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ कुछ अनसुनी आवाजें और कहानियाँ आज भी गूंजती है जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यही वजह है कि इतिहास के साथ साथ रोमांच पसंद करने वाले लोग भी यहाँ खींचे चले जाते हैं। अगर आप पुणे में रहते हैं या कभी यहाँ पे जाए तो शनिवार वाड़ा जरूर जाइए। दिन में इसकी खूबसूरती देखिए और शाम में होने वाला लाइट एंड साउंड शो मिस मत कीजिए, जहां इतिहास जैसे आपके सामने जिंदा होता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक पुणे के इस ऐतिहासिक खजाने की। अब वक्त है थोड़ा सा म्यूजिक की जर्नी पर चलने का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर बात में थोड़ा सा इतिहास और ढेर सारा एहसास है। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171 4253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुजरिम सही मैं सादा दिल मुजरिम सही इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए सारे वो कोई और

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

तो इतना लंबा ये बेहतरीन सा सफर था, प्रिपरेशन के बारे में अभी हमने सर से जाना, लेकिन ये सफर कुछ एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ, इसे 6 साल लगे थे, तो उस फेज में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी. रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुनी, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।